0: weather update.
1: Mausam mukhyatah saaf rehne wala hai. Some cloud from late morning with the chance of shower north of Fangaparawa. South easterlies dying out in the evening. To mausam aaj theek thaak hi rehne wala hai. Fangaparawa ke area mein kuch barish hogi. A high of 19 degrees aaj temperature rehne wala hai aur raat ko thand padne wali hai. 9 degrees tak aaj temperature jane wala hai overnight. कल के लिए 19 डिग्रीज ड्यूरिंग द डे ओवरनाइट 9 डिग्रीज कल भी मौसम ठीक ठाक रहने वाला है
2: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
3: जो कि करते शिद्दत के साथ करते हैं
2: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
4: रेडियो पॉप

0: 12:05 हो चुका है, शनिवार है आज, दी 2nd of May, मई महीना कल शुरू हुआ, आज मई का दूसरा दिन है और मैं जिकाश आपके साथ में शामिल हो चुका हूँ विद रेडियो पाप। अभी से लेकर शाम 6 बजे के बीच में आपको हम अपडेट करने वाले हैं विद अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर आर हैपनिंग इन न्यूजीलैंड एंड अराउंड द वर्ल्ड। स्पोर्ट्स की दुनिया में तो आप जानती हैं, अभी ने आपको अपडेट किया है कि ओ लीग का एलिमिनेशन ये शुरू हो चुका है एंड सुपर रग्बी में कल कुछ लोग निराश हुए हैं, कुछ लोग बहुत खुश हुए हैं आफ्टर द हरिकन्स एंड क्रुसेडर्स गेम। इस पर हम कुछ बातें करेंगे, प्लस आज ब्लूज किनसे खेलने वाली है, डू यू नो, इफ़ यू डोंट नो तो भाई बस यूँ हमारे साथ में चिपके रहे, आपको हम अपडेट करते चलेंगे। NRL में कौन सी टीम कहाँ पर खेल रही है एंड व्हाट्स हैपनिंग इन IPL, इज़ योर टीम लिविंग द ड्रीम या फिर आपको ये रात को जगाए रखती है क्योंकि खराब खेल रही है, तो ये सभी बातें करेंगे। यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू बिकम ए काउच कोच, हमारे साथ में आप अपनी टीम को क्रिटिसाइज कर सकते हैं या फिर कुछ टिप्स दे सकते हैं, ये सभी बातें हम करते चलेंगे राइट टिल 6 PM। तो मैं हूं जिकाश, आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं ऑन रेडियो पब, याद रहे 104.2 FM और रोवा पर आप हमें दुनिया के किसी भी कोने से सुन सकते हैं। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले एक कहावत है दैट आई केम अक्रॉस दिस मॉर्निंग, जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है और जिन्हें सपने पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। छोटी सी बात है लेकिन क्वाइट डीप। स्वागत कर रहे हैं आपका क्योरा।
1: You're listening to Chikash.

क्या लगता है, ऑकलैंड फुटबॉल क्लब या फिर मेलबर्न सिटी फुटबॉल क्लब, इन दोनों टीमों से कौन सी टीम विल बी गोइंग थ्रू टू द फाइनल्स? अपना प्रेडिक्शंस आप अपने नाम के साथ भेजें 5599 पर।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: सिर्फ रोवा पर।
1: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
2: हाँ। अच्छा
1: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
2: मिसेस सिंह,
3: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
4: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
5: The beat of Bollywood,
6: world's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
5: Yeah. Big Radio Pub. पर आपके साथ हैं चिकाश।
7: राइट, अपनी प्रेडिक्शंस हमारे पास आप भेजते रहे कि आज जो एलिमिनेशन फाइनल होने वाला है, एलिमिनेशन फॉर द फाइनल फॉर ओ एफ सी OFC का भी अपडेट हम आपके साथ में शेयर करेंगे, क्योंकि फाइनल्स ये बहुत ही जल्द होने वाले हैं। लेकिन अभी हम बातें कर रहे हैं आई लीग की, एंड आई लीग में आज मेलबर्न सिटी फुटबॉल क्लब और ऑकलैंड FC खेलने वाले हैं एट 5 PM राइट हियर इन ऑकलैंड। तो इनमें से कौन सी टीम की जीत होने वाली है, कौन सी टीम जाने वाली है फाइनल्स के लिए, ये आप हमें बताएं 5599 पर।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: Alright, तो A-League में the first elimination final ये खेला जाएगा आज at 5 PM between Auckland Football Club and Melbourne City. उसके बाद में 9:40 PM पर Melbourne Victory और Sydney Football Club they will be playing in the second elimination final. और इसके बाद में दो टीमें ये क्वालिफाई हो जाएंगी for the finals. तो क्या लगता है आपको Auckland Football Club या Melbourne City इन दोनों में से कौन सी टीम आज जीतने वाली है?

0: Radio Pub. हम पर आपके साथ हैं जिकाश.
1: एक बजने का आए हैं एंड इफ यू जस्ट ज्वाइन, आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं ऑन रेडियो पब 104.2 एफएम और रोबा के जरिए आप हमें सुन रहे हैं. शायद आप सोच रहे होंगे या फिर आपने कोशिश की टू लिसन टू अस ऑन 702 AM. वेल, दैट फ्रीक्वेंसी इज नो मोर. द बिग मास्ट आउट इन हेंडरसन दैट हैज़ बीन टेकन डाउन और ये हमारे हाथों से बाहर है कि इस फ्रीक्वेंसी को हम दोबारा लागू कर सकें, दोबारा जारी कर सकें. तो भाई आप 104.2 FM वाइल यू आर in Auckland, lekin the better one when you are outside of Auckland, the best one is Rova. Rova par jaye, Rova download kare, Rova par hamara station aapko milega, hamare sab podcast aapko milenge, hamare sab competitions wahan pe aapko milenge. And talking about competitions, Churdle, iske bare mein kuch doston se baatein hui and I have a friend who has actually won $100. Lekin कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोशिश की है और दे आर स्टिल ट्राइंग, क्योंकि अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप जीतेंगे कैसे. तो चर्डल CHURDLE, लुक दैट अप ऑन द रोवा ऐप और आप जाए एंड टेस्ट इट आउट कि आप न्यूजीलैंड स्लैंग्स, न्यूजीलैंड वर्ड्स के बारे में कितना जानते हैं. तो आप फटाफट जाए चैनल पर, उस गेम को खेले. अगर आप बिना हिंट यूज़ किए आप आंसर करते हैं और बहुत ही जल्दी जल्दी आप आंसर करते हैं दी क्वेश्चंस, तो आपको डबल एंट्री मिलने वाली है फॉर द $100 ड्रॉ. बहुत सारे पैसे आपको हमने देने हैं, $100 एवरी डे. ये कोई भाई या बहन जीत रहा है.

हम पर रेडियो पब का मजा आप ले रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट बिग शो दैट्स हैपनिंग इन ऑकलैंड, देयर इज जावेद अली. जावेद अली का जो नेक्स्ट चूहा है ये पहुंच चुका है ऑन आवर शोज, और इसके लिए टिकट्स बहुत ही ज़ोरों से बिक रहे हैं. क्या आपको मालूम है कि टिकट्स आपको कहां से लेने हैं? वेल इफ़ यू नो यू नो, इफ़ यू डोंट नो तो भाई हम आपको बताएंगे. जावेद अली इनका जो टूआ है यहां पर मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए गाने ये अपने अंदाज में पेश करने वाले हैं, और इसको आपको सुनना है तो आपको टिकट्स ले लेने हैं फॉर द 8th of May. अगले शुक्रवार को ये शो होने वाला है, और दिस इज़ द फाइनल वीक फॉर यू टू गेट योर टिकट्स. टिकट्स बिक रहे हैं फॉर रफ़ी और मैं. दिस इज़ अ स्पेक्टेकुलर ट्रिब्यूट. दिस इज़ हैपनिंग एट विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर एंड टिकट्स आर अवेलेबल ऑन StarAllianceEntertainment.com. StarAllianceEntertainment.com यहाँ पर जाए, और mark my words, this is a concert that you will never forget. क्योंकि रफ़ी साहब की तो बात ही अलग थी, और जावेद अली जो कि बहुत सारे लोगों के पसंदीदा गायक है, बहुत ही अलग ही आवाज़ है इनकी, तो इन दोनों को एक साथ में, मतलब रफ़ी जी की अंदाज़ को और जावेद अली को उनके अंदाज़ को अपनाते हुए इस शो को प्रेजेंट करते हुए, टाइमलेस क्लासिक ऑफ मोहम्मद रफ़ी बाय जावेद अली, दिस इज़ हैपनिंग एट विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर एंड टिकट्स आर स्टार्टिंग एट जस्ट $59. फूड स्टॉल्स यहाँ पर रहने वाले हैं, और ईजी ऑन साइट पार्किंग अवेलेबल है एट विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर. फ्राइडे 8th May 2026. StarAllianceEntertainment.com पर टिकट्स आप जल्द से जाकर लें.

0: धंधे पर हम काउच कोच ये सेगमेंट लेकर आते हैं जहां पर हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ में शामिल हो एंड शेयर योर थॉट्स अबाउट योर टीम्स द गेम दैट यू थिंक यू आर अ प्रोफेशनल एट। चाहे आप सोचते हैं कि आप एक सोका पंडित है, चाहे रग्बी के बारे में आप बहुत सी बातें जानते हैं, या फिर आप जानते हैं कि आपकी टीम को कैसा खेलना चाहिए इन IPL। Do you know the best for your team? अगर आप जानते हैं तो हम आपसे बातें करना चाहते हैं अबाउट अ फ्यू अपकमिंग मैचेस जो खेले जा रहे हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, चाहे वो IPL हो, चाहे NRL हो, चाहे सुपर रग्बी हो। OFC इज जस्ट अराउंड द कोना। गो मीडिया स्टेडियम पर द नेक्स्ट सेट ऑफ मैचेस शुरू होने वाले हैं ऑन 6th of May अंडर OFC प्रो लीग एंड दिस विल बी द लीडर्स ग्रुप। इसके बाद में सेमीफाइनल प्लेऑफ्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और the teams that win the most games out of the next round of matches will be making it to the semi-final playoffs. So, iske bare mein agar aapko baatein karni hai, bas hamare saath jud jaye on 0800-004-866 par. Playing Bollywood's biggest hits.
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: Anchor Protein Plus pouches and shakes are packed with protein, yumness, and make nourishment so deliciously simple. To get your protein in, all you need to do is crack open, enjoy, done. Anchor Protein Plus, protein made deliciously simple.
3: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, e-waste हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे Tamaki Turuki, All Together Oakland.
4: Pacific Electrical Services presents Javed Ali live in Auckland performing his blockbuster hits and a special tribute to the legendary Mohammed Rafi Saab in Rafi Aur Main, promoted by Star Alliance Entertainment at Victory Convention Center, 8 May, 7 p.m. onwards. Proudly supported by key contractors. For tickets, visit staralliancentertainment.com or call Edwin on 0211-382184. Ek din tera ho jaunga.
5: You can enjoy a flexible personal loan with zero establishment fee when you apply for a GEM personal loan by the 19th of May 2026. GEM loans can be used for all kinds of things, like a new car, your dream holiday, a much-needed renovation, or simplifying debt. With weekly, fortnightly, or monthly repayment options available, apply online in under 7 minutes, and if approved, we'll waive the loan establishment fee. That's a saving of $240. Establishment fee waived until 19th of May 2026. T's and C's apply.
6: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने ले ले तुम
4: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स रेडियो पब योर लिसनिंग टू चिकाश।
0: रेडियो पब में आपको हम अपडेट कर दें अबाउट दी OFC प्रो लीग। राउंड 5 खेल खत्म हुए, उसके बाद में अब शुरू होने वाला है लीडर्स प्लेऑफ एंड लीडर्स ग्रुप में फर्स्ट गेम इज़ हैपनिंग बिटवीन बुला FC एंड साउथ आइलैंड यूनाइटेड और ये होने वाला है ऑन द 6th of May एट 3 PM एट गो मीडिया स्टेडियम। इसके लिए टिकट्स आप खरीद सकते हैं ऑन द OFC वेबसाइट ofcproleague.com पर आप जाएं, यहाँ पर टिकट्स आपको मिलने वाली है। द सेकेंड मैच ऑन द 6th of May इज़ हैपनिंग बिटवीन ऑकलैंड फुटबॉल क्लब एंड साउथ मेलबर्न फुटबॉल क्लब। That's again on the 6th of May. 9th of May को Auckland Football Club और Bulla FC, Auckland Football Club इनकी हार हुई थी when they played against Bulla FC in Fiji. तो क्या अपना बदला Eden Park पर 9th of May को Auckland Football Club ले सकती है या नहीं? On the same day, 9th May को साउथ मेलबर्न फुटबॉल क्लब और साउथ आइलैंड यूनाइटेड भी खेलने वाले हैं ईडन पार्क पर। तो दिस विल बी अ डबल हेडर ऑन द 9th ऑफ मे। फर्स्ट गेम एट 2:30 PM, 6:30 PM पर सेकंड गेम एंड द थर्ड राउंड ऑफ मैचेस इन द लीडर्स ग्रुप साउथ मेलबर्न फुटबॉल क्लब और बुला एफसी खेलने वाले हैं ईडन पार्क पर ऑन द 12th ऑफ मे. ऑकलैंड फुटबॉल क्लब फॉलोइंग दैट गेम. ऑकलैंड फुटबॉल क्लब और साउथ आयरलैंड यूनाइटेड 7 PM पर ईडन पार्क पर खेलने वाले हैं. तो ऑल टुगेदर 6 मैचेस होने वाले हैं और इन मैचेस के बाद में फिर सेमीफाइनल प्लेऑफ्स खेले जाएंगे. तो हैज़ योर टीम मेड इट टू द लीडर्स ग्रुप प्लेऑफ? ये सुनो, क्या आप जानते हैं कि इन प्लेऑफ में कौन सी टीम बेहतर परफॉर्म करने वाली है एंड किस टीम को किस तरह से खेलना था? क्या आपके वो इसके बारे में कुछ टिप्पणी कर रही है? अगर नहीं तो वेल जस्ट कीप लिसनिंग टू अस, क्योंकि हमारे साथ में थोड़ी ही देर में एक बहुत ही ज्ञानी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को हम शामिल करने वाले हैं जो स्पोर्ट्स के बारे में, सोका के बारे में स्पेशली बहुत ज़्यादा जानते हैं. अभी थोड़ी देर पहले मेरे जख्मों पर इन्होंने नमक छिड़का है अबाउट माई क्रुसेडर्स टीम हु वेंट डाउन अगेंस्ट हरिकन्स लास्ट नाइट. तो कौन है ये शख्स, इनके साथ में हम बातें करेंगे अराउंड 1:40 PM. सुनते रहें.

0: Yo.
1: Big Radio Pub.
2: रेडियो पब का मजा आप ले रहे हैं, मैं हूं जिकाश, आपका साथ देता चल रहा हूं। सुपर रग्बी, दिस इज बिकमिंग मच मोर इंटरेस्टिंग। कल हरिकन्स एंड क्रूसेडर्स के बीच में खेल हुआ इन वेलिंगटन एंड हैविंग अ होम ग्राउंड एडवांटेज हरिकन्स ओवरकेम क्रूसेडर्स बाय 38-31 एंड फॉलोइंग दैट टेबल्स पर अगर हम नजर डालें तो हरिकन्स हैव एक्सटेंडेड देयर लीड इन द फर्स्ट पोजिशन विद 40 पॉइंट्स। उनके ठीक पीछे चीफ्स है 36 पॉइंट्स के साथ एंड आर चीफ्स प्लेइंग दिस वीकेंड। नो, चीफ्स आर नॉट प्लेइंग दिस वीकेंड, तो चीफ्स के पास अभी मौका नहीं है टू कैच अप दिस वीकेंड इन कंटेंशन विद हरिकन्स। लेकिन उसके अलावा ब्लूज आज रात को खेलने वाली है अगेंस्ट मोआना एंड आई थिंक इट शुड बी अ कम्फर्टेबल विन फॉर द ब्लूज, बट इफ यू से अदरवाइज यू कैन डिस्कस इट विद मी राइट हियर ऑन हम। और इसके अलावा अगर हम अन्य मैचेस की ओर देखें तो इस तरह वारटास और फोर्स के बीच में खेल हुआ, फोर्स बीट वारटास बाय 20-17। फिजन रुआ और हाईलैंडर्स आज खेलने वाले हैं एट 4 PM इन फिजी, गोविंद पार्क बा में ये खेल होने वाला है। तो ऑल द बेस्ट टू हाईलैंडर्स हम कहना चाहते हैं, अगर आप फिजी से हैं यू माइट बी सपोर्टिंग फिजन रुआ। All the best to Fijian Rua from your side as well. Mona Pacifica and Blues 7:05 PM in Auckland. They are playing at the North Harbour Stadium, which is sort of the home ground for Mona Pacifica. Reds or Brumbies featuring in the last match of this week tonight at 9:35 PM. This match is happening at the Suncorp Stadium in Brisbane. Reds taking on Brumbies. So, is par bhi updates hum aapke saath mein share karte chalenge.

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: Real South Indian taste ka craving hai? Try karo Kashish Foods Dosa Batter. Freshly made in New Zealand, stone ground for that authentic texture. Soft, fluffy idlis or perfectly crispy dosas. Har bar. Classic ho ya ragi. Multigrain ya medu vada batter. Sab milega. Aur haan, buy any Kashish Dosa Batter, any size or pao 250 grams ginger garlic paste bilkul free. Limited time offer 31st May tak. Kashish Foods. Eat better, live better.
3: The beat of Bollywood.
4: World's best, hamari koi branch nahi hai. Yeah.
3: Radio Pub.
5: रेडियो पब का मजा आप ले रहे हैं. मैं हूं जिकाश एंड मेरे साथ में काउच कोच में हिस्सा लेने का मौका हमने आपको दिया था. कुछ लोगों ने ऑफ एयर कॉल किया, दे डोंट वांट टू गेट ऑन एयर एंड अपनी अपनी टीम्स के बारे में खूब क्रिटिक और क्रिटिसाइज इन्होंने किया है. तो अब हम एक ऐसे शख्स से बातें करने जा रहे हैं जिनको आज आप सुबह से सुनते आ रहे हैं टिल मिड डे. अभी एंड अभी स्वागत है आपका.
6: हाय जिकाश, कैसे हो आप?
5: आई एम गुड. आज कौन से टीम पर आप बेटिंग करने वाले हैं?
6: अच्छा, आई एम रियली लुकिंग फॉर टू जो फिक्स्चर 4 बजे शाम को है गोविंद पार्क बा में.
5: right.
6: और 4R स्टेडियम न्यूली डन और यहाँ पर ड्रुआ और हाइलैंडर्स के बीच में जो खेल रहेगा, मैं एज अ प्राउड फिजियन यही कहूंगा कि मेरा बेट जो है ये ड्रुआ पर ही है.
5: राइट right. And I think otherwise, क्योंकि Highlanders have been pretty good this season. लेकिन जैसे कि आपने कहा, Fijian Drua, when they get into their home ground amongst their supporters, इनका रुतबा ही अलग हो जाता है.
6: और मेरे ख्याल से अभी तक Drua undefeated है इस पार्क पर.
5: Right.
6: और जबकि 4 बजे शाम को कड़कती धूप में वहाँ पर game रहेगी. और इसके साथ में अगर जो टेबल की ओर देखे तो ड्रुआ इज करंटली ऑन एट 10th पोजीशन.
5: जी हाँ.
6: साथ में हाइलैंडर्स 7 पर है.
5: यप. सो
6: तो इट्स हाँ
5: टू फॉर ड्रुआ टू मेक इट इनटू द टॉप 8 बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी. इफ दे गेट अ विन टुनाइट या फिर टुडे दे माइट जस्ट नॉक ऑफ वराटास फ्रॉम द 8th पोजीशन और दे कैन देन वॉक टुवर्ड्स बीइंग इन द टॉप 8.
6: That's right. यही कोशिश रहेगी क्योंकि जो होम क्राउड जो सपोर्ट है, oh that's another thing. क्योंकि काफी लोग टर्न आउट होते हैं, ह्यूज नंबर्स रहती है. एंड आप भी जानते होंगे ड्रुआ, हम जानते हैं कि एवरी वीक दे कम आउट एज अ न्यू टीम. वो परफॉर्म कैसा करेगी ये कोई फोशुआ नहीं कह सकती, लेकिन व्हेन दे टर्न आउट टू प्ले एंड इफ दे क्लिक देन ये किसी पर भी भारी पड़ सकते हैं.
5: आई मीन दैट वाज प्रूवन लास्ट वीक जब ब्रम्बीज और नॉट लास्ट वीक द वीक बिफोर इन वीक 10 या Fijian Drua डिफीटेड ब्रम्बीज इन देयर होम ग्राउंड एंड दैट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड.
6: टोटली अनएक्सपेक्टेड. और जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रम्बीज अभी करंटली टॉप 5 पोजिशन पर है. तो अगर जो ये ब्रम्बीज के होम ग्राउंड में उनको हरा सकती है तो होप्स आर क्वाइट हाई कि यहाँ पर भी टेबल्स को ये टर्न अराउंड कर सकते हैं आज शाम को.
5: एग्जैक्टली. एक बात आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल माइट हैव नोटिस्ड कि जब बारिश होती है तो जैसे बारिश में श्रद्धा कपूर खुश हो जाती है, उसी तरह से Fijian Drua Fijian Drua भी अच्छा खेलती है एंड देन द ओड्स आर इन देयर फेवर. लेकिन आज वहां पर कड़ाके की धूप है तो आई वुड से दैट हाइलैंडर्स आर गोना बी टफ कंपटीशन एज वेल.
6: अच्छा, तो ये बातें करेंगे 1 hour 20 minutes के बाद में, जबकि इट विल बी अ ग्रेट वॉच एंड आई एम हेडिंग आउट होम. देखने ही वाला हूँ इस मैच को. And right. I'm pretty sure it will be a close, लेकिन hopefully अपने home ground पर, अपने home soil पर, we are crowned the winners today.
5: Well, fingers crossed. अच्छा, the next one happening at 5 PM I-League, Auckland Football Club और Melbourne, इनके बीच में जो खेल होने वाला है, what's your take on that?
6: मैंने Auckland FC के जितने game देखे हैं, इनके पास में जो स्ट्राइकर है सेम कोस्ग्रो,
5: राइट,
6: ही इज रियली रियली गुड. एक जैसे कोई स्ट्राइकर होते हैं ना, जो प्रोलिफिक स्ट्राइकर होते हैं, मार्क्समैन होते हैं, उनको पेनल्टी बॉक्स के अंदर या उसके सराउंडिंग में अगर जो बॉल मिल जाता है, दे फिनिश इट.
5: Right.
6: तो इसी तरह से सेथ कोसग्रोव एक खिलाड़ी है, इसके साथ में डेविड मे है, ये आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि गो मीडिया स्टेडियम पर ये जो गेम है यहाँ पर ये भी जीत हासिल करेंगे आज.
5: Right. So you are betting on what was Melbourne?
6: हाँ, और ऐसा मुझे लग रहा है कि ओकलैंड एफसी इस एलिमिनेशन राउंड में जरूर जीत हासिल करेगी. आपको क्या लग रहा है?
5: आई वांट ओकलैंड एफसी टू विन. मेरा जो टेब का बेटिंग प्रोफाइल है ये कुछ कारण से ब्लॉक्ड है, तो पैसे तो नहीं लगा सकता, लेकिन बीइंग फ्रॉम ऑकलैंड आई वुड वांट एएफसी टू गेट अ विन आउट ऑफ दिस, क्योंकि आई थिंक ऑकलैंड एफसी एंड मेलबर्न सिटी फुटबॉल क्लब व्हेन दे प्लेड लास्ट मेलबर्न सिटी डिफीटेड एएफसी.
6: दैट्स राइट, आप सही बोल रहे हैं. और टेबल पर लेकिन अगर जो देखे तो ऑकलैंड ने फिनिश किया था एट अ हायर पोजीशन देन मेलबर्न, तो होपफुली दे कंटिन्यू विद द विनिंग रन और इस गेम में भी वो टर्न आउट होए एज अ विनर्स, यही हम चाहेंगे, फिंगर्स क्रॉस्ड.
5: ओके, तो देखते हैं क्या होता है शाम को. थैंक यू सो मच अभी.
6: थैंक यू जिकाश, आपसे फिर बातें होंगी.
5: चीयर्स, बाय.
6: चीयर्स, बाय.

0: Yo.
1: Big Radio Pop.
2: दो बजकर दो मिनट हो चुका है एंड मोर बाइट्स एंड बेंटा ऑन दिस आवर विथ मी जिकाश राइट हियर ऑन 104.2 एफएम एंड ऑन रोवा. आपको याद दिला दे कि मदर्स डे के बारे में आपको हमने बताया था व्हेन आई स्टार्टेड द शो. तो भाई आप क्या कर रहे हैं फॉर मदर्स डे, क्योंकि आपको हम देना चाहते हैं मौके टू गेट सम कैश फॉर योर मम. सोशल मीडिया पर हमारे जाए एंड वहाँ पर एक पिंड पोस्ट है फॉर मदर्स डे कॉम्पिटिशन. बस आपको एक छोटा सा या फिर प्यारा सा वाउचर बनाना है, उस वाउचर में आप वो डाले डेट योर मम डिजर्व्स. आपके बर्थडे पर शायद आपको कई सारे वाउचर्स मिले होंगे फॉर शॉपिंग, फॉर रोबक्स फॉर इंस्टेंस. तो आप क्या सोचते हैं आपकी मम को क्या पसंद आएगा एज अ गिफ्ट ऑन मदर्स डे फ्रॉम योर साइड. वो सारी चीज़ डालकर आप एक वाउचर बनाएं, एक छोटा सा कार्ड बनाएं, वाउचर बनाएं एंड बस उस वाउचर को आप अपडेट करें, अपलोड करें इन आवर फेसबुक पोस्ट. तो फेसबुक पेज हमारा है हम 104.2 एफएम एंड वहाँ पर जाकर टैग योर मम, टैग योर फैमिली मेम्बर्स, टैग योर सिबलिंग्स और इफ़ वी लव योर वाउचर्स वेल यू विल बी इन द ड्रॉ टू विन $200. और इसके लिए हम ड्रॉ करने वाले हैं ऑन द 8th ऑफ मे अगले शुक्रवार को द ड्राइव शो में. क्या आप $200 जीतना चाहते हैं? बस एक पर्सनलाइज्ड वाउचर आप तैयार करें फॉर योर मम, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट एंड यू कैन गो इनटू द ड्रॉ टू विन $200 इफ़ यू अपडेट दैट वाउचर और अपलोड दैट वाउचर ऑन आवर फेसबुक पेज ऑन हम 104.2 एफएम एंड वहां पर हमारा मदर्स डे वाउचर का एक पिन पोस्ट है, उसके नीचे आप उसको डालें.

0: हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
1: You're listening to Chikash.
2: That's right, you're listening to me, Jikash, on 104.2 FM and on Rova. Radio Pub ka karyakram jari hai and let's head out to Kelston, jahan par Sachin ke ghar par aaj puja paath ho raha hai aur kai sare dost karyakram ka maza le rahe hain. Thank you so much for tuning into 104.2 FM. Now, this hour par, we are going to Bites and Benta and aayye baate karte hain IPL ki. Indian Premier League mein बहुत सारी टीम बहुत सारी कोशिश कर रही है, क्या आपकी टीम जीत हासिल कर रही है जैसा कि आपने सोचा था, या फिर आपके दोस्त बस आपको रोस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपकी टीम एकदम से बद्धा खेल रही है. नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट द ग्रेटेस्ट राइवलरी बिटवीन द टीम्स ऑफ आईपीएल. क्या आपको क्या लगता है कि वो कौन सी दो टीम है जो बस जब खेलती है तो ग्राउंड पर आग ही लगा देती है और फिर फैंस भी एक दूसरे से एकदम से भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं. विच टू टीम्स आर द ग्रेटेस्ट राइवल्स इन आईपीएल आपके हिसाब से? लेट्स टॉक अबाउट दैट. 5599 पर आप हमें बताएं कि व्हाट टू टीम्स आर द ग्रेटेस्ट राइवल्स इन आईपीएल. अपने नाम के साथ अपना जवाब हमारे पास भेजे 5599 पर. दिस सॉन्ग गोज आउट टू सचिन एंड ऑल द फ्रेंड्स एंजॉयिंग इन केल्स्टन. बोला

0: Yo.
1: Big Radio Pub.
2: इंडियन प्रीमियर लीग की ओर हम देखे तो आज सुबह जो खेल हुआ बिटवीन राजस्थान रॉयल्स एंड दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, इसमें डीसी की जीत हुई बाय 7 विकेट्स 2-5 पर. राजस्थान रॉयल्स ने फिनिश किया देयर गेम आफ्टर द 20 ओवर्स एंड दिल्ली कैपिटल्स ने 2-6 रन्स बनाते हुए 19.1 ओवर्स में खेल ख़त्म कर दिया. CSK, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में आज या फिर कल सुबह 2 बजे खेल होने वाला है. व्हाट डू यू थिंक, हु विल विन दिस वन? उसके बाद में टुमारो 10 बजे पर सनराइज हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स, ये आमने सामने करने वाले हैं 10 PM टुमारो. और फिर मंडे 4 मई को सुबह गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स तड़के सुबह न्यूजीलैंड समय अनुसार 2 AM पर खेलने वाले हैं. लेकिन सबने सवाल जो किया है, विच टू टीम्स आर द ग्रेटेस्ट राइवल्स इन IPL, आपको क्या लगता है? गुरकीरत जी हैं, यू सेड दैट RCB एंड CSK इन दोनों के बीच में दुश्मनी बहुत ही अलग लेवल पर है. डू यू अग्री विथ गुरकीरत? इफ़ नॉट, आपको क्या लगता है, हु विच टू टीम्स आर द ग्रेटेस्ट राइवल्स इन IPL? इसके बारे में मैं थोड़ा सा रिसर्च करूँगा एंड आई गेट बैक विथ सम फैक्ट्स इन जस्ट अ फ्यू मोमेंट्स. एंजॉय करें इस अगले गीत को फ्रॉम बादशाह.

Radio Pub. Kunal Ganja ki, Kunal Ganjawala ki awaz aur on screen Imran Hashmi and Malika Sharawat. If you watched that movie, well, that movie set a standard for Bollywood aur jis standard ko bahut sare aur movies ne follow kiya and got blockbuster hits out of that. So that was some nostalgia for you, that song. Pretty much jitne bhi logon ne us movie ko enjoy kiya hai, Kunal Ganjawala ko appreciate karte hain. You must have loved that song. कार्यक्रम में और भी आगे बढ़ते हैं. आपसे हमने सवाल किया है अबाउट द ग्रेटेस्ट राइवलरी इन आईपीएल. नाउ गूगल बाबा से हमने पूछा तो अकॉर्डिंग टू गूगल और ग्रेटेस्ट राइवलरीज इन आईपीएल देयर इज बिटवीन मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ऑफन टर्म्ड एज एल क्लासिको ऑफ द आईपीएल फीचरिंग द टू मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स विद फाइव टाइटल्स ईच दे हैव प्लेड अबाउट 40 मैचेस विद मुंबई इंडियंस होल्डिंग अ स्लाइट एज इन टोटल विन्स. Other top rivalries include CSK and RCB and Kolkata Knight Riders and Royal Challengers Bengaluru. So, kya aap isse sehmat hai ki Mumbai Indians and Chennai Super Kings are the greatest rival teams in IPL? Yes or no? Let me know.

It's 34 minutes past 2 p.m. and main hu Jikash aapke saath Radio Pub ka maza hum le rahe hain. Now, I was checking the ouroakland.auckland council ka website. That is ouroakland.auckland council.gov.nz and pehla article jo caught my attention was let's talk about fuel. To bhai इसके बारे में आप बातें करते हैं, ज़रूर बातें करते हैं, क्योंकि जेब से अब कुछ ज़्यादा ही पैसा जाने लगा है. नाउ आई ड्राइव ए 2 लीटर पेट्रोल व्हीकल विच इज़ ए किया सेल्टोस, 2024 ईयर का है ये, एंड टू गो फ्रॉम एम्प्टी टैंक टू अ फुल टैंक आई पे अराउंड $190 विच इज़ अ लॉट, आई मीन इट इज़ अ लॉट. तो आप कितना ज़्यादा पे कर रहे हैं एंड क्या इसको मिटिगेट करने के लिए, अपने फ्यूल कंजम्पशन को कम करने के लिए कुछ स्टेप्स आपने लिए हैं? आर यू नाउ राइड शेयरिंग? क्या आप ढूंढते हैं लोगों को कि उनके साथ में आप होपिंग कर सके जब आपको कहीं फंक्शंस में जाना पड़े? क्या आप गाड़ी को अब कम चलाते हैं एंड यू टेक अ वॉक टू योर नियरेस्ट स्टोव टू गेट few things instead of taking your car? तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं and it's an interesting article on let's talk about fuel and how the Auckland Council Group is tackling fuel supply disruption. तो इस पर कुछ बातें करेंगे बस थोड़ी देर में.

0: Alright, तो अगर आपके पास समय है, अगर समय नहीं है तो थोड़ा सा समय निकाले एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस आर्टिकल. एंड दिस इज फाउंड ऑन ourauckland.aucklandcouncil.gov.nz. 28 अप्रैल को इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया है इन दियर वेबसाइट. और ये वेबसाइट पर ये आर्टिकल दर्शाता है कि ऑकलैंड काउंसिल कैसे अपने फ्यूल डिसरप्शंस को मैनेज कर रही है, कहाँ पर ये फ्यूल को प्राथमिकता दे रही है कि कौन से डिपार्टमेंट्स को फ्यूल ज़्यादा यूज़ करना है. एंड ऑकलैंड ट्रांसपोर्ट ये इस काउंसिल का लार्जेस्ट फ्यूल यूज़र है. दैट रिक्वायर्स अप्रोक्सीमेटली 700,000 लीटर्स ऑफ डीजल पर वीक अक्रॉस बस एंड फेरी ऑपरेशंस. वेस्ट कलेक्शंस रिक्वायर मोर देन 60,000 to 70,000 लीटर्स ऑफ डीजल पर वीक. एंड एरियाज लाइक हेल्थी वाटर्स, फ्लड रेजिलियंस, See our storm water operations, capital delivery and maintenance activities using around 32,000 liters per week. तो अच्छा, खूब अच्छी तरह से breakdown किया गया है कि किस तरह से Auckland Council और Auckland Transport अपने fuel usage को manage कर रही है. Now, being a household on a personal level या फिर family level पर आप कैसे manage कर रहे हैं? There are a few tips जो यहाँ पर share की गई है, जैसे कि public transport. You can leave the car at home and get on a bus or a train or a ferry अगर ये आपको suit करता है. I know these are not always reliable. कभी कभी buses की routes बदल जाती हैं, trains ये बंद हो जाती है, and ferries they get stuck. लेकिन जहाँ कहीं पर भी आपको एकदम urgent need नहीं हो to be there at x y z time, you can take a public transport. The next one is fair share. अगर आप एक एम्प्लॉयर है एंड यू आर लुकिंग टू सपोर्ट योर एम्प्लॉयज़ विद कम्यूटिंग कॉस्ट, ट्रेवल कॉस्ट में आप अपने एम्प्लॉयज़ को हेल्प करना चाहते हैं, यू कैन चेक आउट फेयर शेयर. इसको लुकअप करें एंड यू विल गेट सम वेज टू सब्सिडाइज वॉक ट्रेवल बाय बस, ट्रेन और फेरी, वाइल यू कैन चूज द अमाउंट यू शेयर एंड वेदर इट्स वीकडेज और एवरी डे. इसके बाद में लव लोकल एंड सेव फ्यूल. नाउ दिस इज समथिंग रियली बेसिक जो आप कर सकते हैं. मान लिया जाए यू हैव ए हैबिट ऑफ डाइनिंग आउट एवरी वीकेंड विथ योर फैमिली. नाउ इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग फ्रॉम मनुकाउ टू द सिटी, लुक फॉर लोकल रेस्टोरेंट्स इन मनुकाउ जहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं वाइल सेविंग फ्यूल. तो सम हैंडी टिप्स शेयर किए गए हैं बाय द ऑकलैंड काउंसिल. आई ट्राई एंड शेयर दिस लिंक ऑन आवर हम्स फेसबुक अकाउंट एज वेल.
1: हाँ

0: हम के दिन क्या बीस को चाहते हो, या ब्रीज, मोर, एज, रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Get the tech from Mum this Mother's Day and shop massive store-wide savings this weekend at Briscoe's. Whether it's cozy bedding or kitchen favourites, shop Mum-approved deals and massive store-wide savings at Briscoe's. See online for T's and C's.
2: The bell has gone, but is the day really over? Between sports meetups, play dates, homework and late shifts, you need to be putting in the right stuff. Packed with calcium, vitamins and protein, grab some Anchor. Real milk, real good.
3: A legacy that built Swaraj. A story that shaped history, based on the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt and Abhishek Bachchan.
4: Kabhi Mughal, kabhi Adil Shahi, inhi saltanaton ki chhati rond kar Hindavi Swaraj ka sapna dekha hai humne.
3: Raja Shivaji, now showing in cinemas. Distribution partner, Real Star Entertainment, rating TBC.

0: सात मिनट रह चुके हैं तीन बजने में एंड राजा शिवाजी जो इसी हफ्ते ओपन हुई एंड काफ़ी प्यार इस मूवी को मिल रहा है. संजय दत्त, अभिषेक बच्चन एंड रितेश देशमुख विथ हर लवली वाइफ जेनेलिया डिसूजा के साथ में इस मूवी को इन्होंने बनाया है. एंड इनका बहुत सालों से सपना था कि ऐसा ही कुछ करे एंड इस स्टोरी पर ये फिल्म बनाए. एंड फाइनली जब ये प्रमोट करने आए फॉर दिस मूवी ही कुडंट होल्ड बैक हिज टीयर्स. तो भाई क्या इस हिस्टोरिकल ड्रामा को आपने देख लिया है? इफ़ नॉट आई थिंक दिस इज़ वर्थ योर वॉच, क्योंकि एक तो ये हिस्ट्री पर आधारित है एंड किसी के सपने को पूरा होते हुए और उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आप मदद पहुंचा सकते हैं. एंड देर इज़ आई थिंक बहुत सारे लोगों को आई वुडंट थिंक आई कांट रिमेंबर एनीवन सेइंग कि वो रितेश देशमुख की एक्टिंग पसंद नहीं करते. तो गिव योर लव टू हिम एंड टू द होल कास्ट ऑफ दिस मूवी राजा शिवाजी जो अब सिनेमा में चल रही है. और this has done a massive advance booking collection with also day one jo box office report hai ye hamare haath lag chuki hai. besides maratha is vision mein isko release kiya gaya hai. trade tracking portal Seknilk iska ye manna hai ki the film has closed its advanced booking at 5.14 crore. besides this Maratha version also contributed to 4.25 crore gross. This is a figure that comfortably places the film at the top in terms of opening day collections. to is par aur bhi reports hum aap tak pahunchayenge ki ek day one mein inhone total collections kitni ki hai.
1: चलो आ जाओ यार अभी डांस फ्लोर.

0: The beat of Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: Radio Pub. हम पर आपके साथ हैं जिकाश.
2: ट्वेंटी 26 फीफा वर्ल्ड कप ये भी एकदम से नज़दीक आता जा रहा है. एंड लुकिंग एट दी फाइट दैट्स हैपनिंग, द कॉन्फ्लिक्ट दैट्स हैपनिंग बिटवीन यूएस एंड ईरान, तो शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या यूएस और ईरान दे विल बी प्लेइंग इन द फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल. क्या फीफा को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं यूएस के प्रेसिडेंट टू गेट ईरान आउट ऑफ द वर्ल्ड कप? वेल, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि reports have said that the US President Donald Trump has said he has no objection to Iran taking part in the 2026 FIFA World Cup. This came after FIFA President Gianni Infantino confirmed that Iran will be part of the tournament. Aur Iran ne bhi confirm kiya hai ki its participation in the World Cup, which will be hosted by the United States, Canada and Mexico in July, is going as they had planned. According to reports, Iran is expected to play its group stage matches in United States as scheduled. And Trump, inka kehna hai, reporters ko unhone bataya hai ki FIFA confirms Iran's participation, then there is no issue with Iran playing in the tournament. So, well, I think that's good news ki jo conflict ho raha hai, uska asar soka par nahi pad raha hai, lekin iska asar Iran ke football fans par to zarur pad raha hai, who are in Iran and facing the consequences of this conflict between Iran and US. I hope ki good sense prevail and ye conflict jald se jald khatam ho jaye kyunki iske karan se mere jeb par bhi asar pad raha hai.
3: This time I want full freedom.

रेडियो पर मजा आप ले रहे हैं. हम फ्लाईओवर फ्रेंजीज के बारे में आपने सुना होगा एंड यू मस्ट हैव ट्राइड टू एंटर इनटू द कंपटीशन. वेल इफ यू हैवंट, अभी भी आपके पास मौके हैं. ऑल यू नीड इज रोवा ऐप एंड हम बताते नहीं थकते हैं कि क्यों रोवा ऐप आपके फ़ोन में होना बहुत ही ज़रूरी है. वेल दिस इज़ अनदर रीज़न, क्योंकि हम आपको देने वाले हैं रिटर्न या टिकट टू फिजी फॉर ए सन सोक्ड एस्केप दैट यू हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ. नाउ जबकि हम विंटर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ठंड ज़्यादा होती जा रही है, वाई नॉट टेक अ ब्रेक एंड हेड इन टू द ट्रॉपिक्स. फिजी में मौसम अब सुधर रहा है. आउट ऑफ द साइक्लोन पीरियड, नवंबर टू अप्रैल के बीच में साइक्लोन सीजन रहता है, अप्रैल से बाहर आ चुके हैं, तो इट्स अ बिट सेफर टू गो टू फिजी क्योंकि उतनी ज़्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए. तो दिस इज़ ए ग्रेट टाइम फॉर यू टू गेट इनटू दिस ड्रॉ. बस रोवा आप डाउनलोड करें एंड लिसन टू द हम स्पेशल कोड वर्ड जो हम आपको देते हैं एवरी वीकडे सुबह 8 बजे, सुबह 11 बजे, दिन में 1 बजे और शाम को 5 बजे आपको हम स्पेशल कोड वर्ड देते हैं. जैसे ही आप स्पेशल कोड वर्ड को सुनते हैं उसके बाद आपके पास 60 मिनट्स रहता है टू गो ऑन टू रोवा एंड पुट इन दैट कोड, एंटर दैट कोड इन द हम फ्लाईओवर फ्रेंजी कंपटीशन एंड जस्ट लाइक दैट यू विल गेट इनटू द ड्रॉ जहां पर आप जीत सकते हैं रिटर्न या टिकट टू फिजी. तो मिस मत करिए मौका, क्योंकि कौन नहीं चाहता. अभी मैं आई वॉज लुकिंग एट फेयर्स गोइंग टू फिजी इन जून. इधर से जाने का फेयर अराउंड $300 है, फिजी से लौटने का फेयर, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्कूल हॉलीडेज, इन द स्कूल हॉलीडेज फिजी से लौट कर आने वाला फेयर इट्स अराउंड $700 टू $1,000 एंड देट इज़ फ्लाइंग इकोनॉमी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिजनेस क्लास. तो भाई वाई नॉट गेट योर हैंड्स ऑन टू दिस फ्री टिकट्स बाय जस्ट गेटिंग इन टू दी हम फ्लाईओवर फ्रेंजी.

0: Yo.
1: Radio Pop. You're listening to Chikash.
2: बीस मिनट हो रहे हैं शाम 3:00 एंड राजा शिवाजी जो थिएटर्स में आप देख सकते हैं इसका लाइव ट्रैकिंग मैं कर रहा था एंड अब तक के लिए इन इंडिया इट हैज़ ग्रॉस्ड अराउंड 14.23 crores विच इज़ गुड न्यूज़ फॉर द टीम ऑफ राजा शिवाजी क्योंकि दिस हैज़ कम आउट एज अ गुड अर्नर एंड लुकिंग एट द फोरकास्ट क्योंकि काफ़ी बुकिंग्स हो चुकी थी और बुकिंग पहले से ही हो चुकी थी तो कभी मेरा मतलब काफ़ी सारे पैसे जो है ये ऑलरेडी बना चुकी है एंड व्हाट वुड बी इंटरेस्टिंग इज़ कि कितनी जल्द इसको OTT प्लेटफॉर्म को बेचा जाएगा अभी तक कोई भी बातें नहीं हुई है कि कौन से OTT मेगा प्लेटफॉर्म इसको खरीदने वाली है आई थिंक दिस विल ऑल्सो बी डिपेंडेंट ऑन कि कितनी ज़्यादा पैसे ये कमाती है इन द थिएटर्स तो हैव यू वॉच दिस दिस हैज़ मेड मोस्ट मनी आउट ऑफ मराठा द मराठा वर्जन ऑफ दिस मूवी हैज़ मेड द मोस्ट मनी कंपेयर टू द हिंदी

0: है।
1: इस मदर्स डे क्या आप जानते हैं अपनी मम्मी का रियल रिएक्शन? From broken flower vases to लौकी की सब्जी experiments, guess कीजिए मम्मी का मूड और जीतिए ढेर सारा कैश। हम पेश करेंगे quirky scenarios on air और आपको बताना होगा मम्मी चिल करेगी या हिल करेगी। Guess and enter the lucky draw to win big cash prizes. तो तैयार हो जाइए for the ultimate game show, Mom's Mood Swings on Hum. Brought to you by Indelible Homes, PFSL, Amma's Food and Malabar Gold and Diamonds.
2: Get the tick from Mum this Mother's Day and shop massive store-wide savings this weekend at Briscoe's. Whether it's cozy bedding or kitchen favourites, shop Mum-approved deals and massive store-wide savings at Briscoe's. See online for T's and C's.
3: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। auckland council.govt.nz/whereitgoes पे। तमाकी तुरुकी, ओल्ड टुगेदर ऑकलैंड।

Yo. Radio Pop. रेडियो पर आप एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम में और भी आगे बढ़ते हैं आवा ऑकलैंड डॉट ऑकलैंड काउंसिल डॉट जी वी टी डॉट एन जेड एक ऐसा वेबसाइट है जहां पर आपको पता लगेगा कि ऑकलैंड में क्या कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कौन से इवेंट्स हो रहे हैं एंड द टॉप स्टोरीज दैट मैटर टू यू। तो 13th of February को एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था आई थिंक आई हैव बीन ओवर दिस अबाउट ऑकलैंड 7 बेस्ट ऑल टाइड फैमिली बीचेस। तो आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं इन दिस वेबसाइट। प्लस अगर आपको हॉर्स राइडिंग या फिर यू लव टू बी अराउंड हॉर्सेस तो देर आर 9 ऑकलैंड हॉर्स ट्रेल्स दैट मेक हूव्स हैप्पी। डू यू ऑन अ हॉर्स या फिर डू यू लव हॉर्सेस एंड आपके पास कोई फ्रेंड है जिनके पास हॉर्सेस है एंड यू लव राइडिंग दैम तो भाई देर आर 9 ऑकलैंड हॉर्स ट्रेल्स जो आपको चेकआउट करना चाहिए। इसके बारे में हम बातें थोड़ी देर में करेंगे। और काउंसिल से अगर आप थक चुके हैं कि आपके कॉम्प्लेंट्स पर कुछ एक्शंस नहीं हो रहा है वेल देयर इज़ अ न्यू AI असिस्टेंट फॉर फास्ट इजी प्रॉब्लम रिपोर्टिंग। इसके बारे में भी बातें करेंगे बस जस्ट बिफोर 4।

ऑलराइट, अगर आप ऑकलैंड काउंसिल से इन टच होना चाह रहे थे एंड यू वांटेड टू मेक सम कंप्लेंट्स, तो ऑकलैंड काउंसिल का लेटेस्ट ये असिस्टेंट फीचर ये शुरू हो चुका है फॉर रिपोर्टिंग. ऑकलैंडर्स कैन नाउ यूज एन AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट टू सेफली रिपोर्ट प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग ग्राफिटी, रोमिंग डॉग्स एंड पार्टी नॉइज. एवरी डे ऑकलैंडर्स हेल्प कीप आवर community is safe, neighborly and tidy by reporting problems to the council. Aur ye aur bhi easy ho chuka hai with the launch of the new purpose built virtual assistant called Ask Auckland Council. Is pe aap graffiti, illegal dumping, roaming dogs, missed bin collections, party people noise as well as आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो आप ऑकलैंड काउंसिल के वेब पेज पर जाए, वहाँ पर आपको आस्क ऑकलैंड काउंसिल का AI फीचर मिलने वाला है. इट्स फास्ट एंड इजी टू यूज़ और अभी तक 8 out of 10 यूजर्स हैव सेड दैट दे फाइंड इट इजी एंड 80% कंपेयर्ड टू 42% जो एग्जिस्टिंग चैनल्स है ये प्रीफर करते हैं आस्क ऑकलैंड काउंसिल का AI फीचर. The assistance Terio Maori feature bhi hai, jahan par Terio Maori ko bhi understand kiya jata hai. It is safe, secure and reliable and it works well for people with access needs as well. To main ise zarur check out karunga kyunki I have seen a few things that are wrong in our community, especially in the area that I live, or I will try to get to the root of the problems and see how fast and how efficiently this feature handles my complaints.

0: Chikash.
1: Yo.
0: Big Radio Pub.
2: The month of May is very special, especially in terms of music and our local talents. Hamare homegrown artists jo hai, inko hum mauka dete hain to get featured on air right here on Hum. To agar aap ek aise shakhs hain jinhone apni recording karai hai aur aap sochte hain ki, well, you just might have it to make it to the big stage, to bhai, अपनी रिकॉर्डिंग आप हमारे पास भेजें ऑन buzz@humfm.com. मेक श्योर कि आपकी रिकॉर्डिंग बहुत ही टॉप क्वालिटी की होनी चाहिए और शायद आपकी है या फिर आपके बैंड की है, तो आप बस अपनी रिकॉर्डिंग हमारे पास भेजें buzz@humfm.com. अगर आप ऐसे शख्स को जानते हैं, ऐसे बैंड को जानते हैं विच यू थिंक शुड गेट फीचर्ड ऑन आवर शोज, तो भाई उनको भी बताएं कि दे माइट जस्ट हैव देयर चांस दैट दे वर वेटिंग फॉर टू गेट नोटिस्ड and to make it onto the world stage. तो बस आप हमारे साथ इन टच हो जाए, buzz@humfm.com पर आप अपनी रिकॉर्डिंग भेजें विद ऑल द डिटेल्स. मेक श्योर कि ये आपके ओरिजिनल ट्रैक्स होने चाहिए, नो प्लेजरिज्म, नो कॉपी राइट इश्यूज, ये हम नहीं चाहते हैं. टॉप 3 आर्टिस्ट विल बी फीचर्ड ऑन आवर रोवा एप एज वेल एंड एक्साइटिंग हैम्पर प्राइजेस हम आपको देना चाहते हैं. Winner will be decided by total engagement, votes or shares across radio and social media. Or once you come on board, that might be your ticket to bigger and better things with Hum. So, bus, get into touch with us at buzz@humfm.com. That is buzz@humfm.com. Ya phir, likhkar bheje 5599 par, we will send you the email ID to your phone. Itna hi aapko karna hai and we can help you become the star that you think you are.

रेडियो पब का मजा आप ले रहे हैं। 4:03 हो चुका है एंड मैं हूं जिकाश, मेरा साथ आप दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अगर आपने अभी ट्यून इन किया है, आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं ऑन 104.2 FM एंड ऑन रोवा। रोवा अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है भाई, अब आपको डांट पड़ने वाली है क्योंकि रोवा के फ़ायदे अनेक हैं। एंड अभी तक अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है, टू रीज़न्स फॉर यू टू डू इट राइट नाउ। पहला है, हम FM का जो कंपटीशन जारी है दैट इज़ फ्लाई अवे फ्रेंजी, और इसके अलावा चर्डल, इसके बारे में हमने आपको बताया है। चर्डल जहाँ पर जाकर आप कीवी वर्ड्स के बारे में अगर आपको मालूम है, यहाँ पे जो स्लैंग्स जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, तो टेस्ट आउट योर नॉलेज, $100 अ डे आप जीत सकते हैं ऑन चर्डल दैट इज़ ऑन रोवा। दूसरा है फ्लाई अवे फ्रेंजी 2026, जहाँ पर फिजी के लिए आपको रिटर्न या टिकट्स हम दे रहे हैं। बस आपको कोड वर्ड्स सुनने हैं, एवरी वीकडे हम ये कोड्स आपको देते हैं, एक बार नहीं 4 इन अ डे, 8 AM, 11 AM, 1 PM, 5 PM। एज सून एज यू गेट द कोड, रोवा पर आप जाए, हम फ्लावर फ्रेंजी कंपटीशन में वो कोड आप डाले, एंड जस्ट लाइक दैट यू विल बी इन द ड्रॉ टू विन रिटर्न योर टिकट्स टू फिजी फॉर अ सन सोक्ड एस्केप दैट यू हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ। तो भाई रोवा डाउनलोड करें एंड लेट मी नो, रोवा पर हमें आप अगर सुन रहे हैं तो कहाँ से सुन रहे हैं, किस एरिया से आप सुन रहे हैं। मैं हूं जिकाश, 6 PM तक हमारा आपका साथ बना रहेगा।

0: हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
1: सुपर रग्बी पैसिफिक में बस खेल शुरू होने वाला है बिटवीन द फिजियन रुआ और हाइलैंडर्स हु हैव ट्रेवल्ड टू बाग विन पार्क में ये खेल बस शुरू होने वाला है। द हाइलैंडर्स आर परफॉर्मिंग अ हाका अगेंस्ट द फिजियन रुआ और खेल में जैसे जैसे अपडेट्स हमें मिलते हैं आई विल अपडेट यू राइट हियर ऑन हम कीप हमिंग।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Yo.
1: Radio Pub.
2: बाईस मिनट हो चुके हैं, चार बजकर खेल हो रहा है इन फिजी बिटवीन द ड्रुआ पिजन ड्रुआ एंड हाइलैंडर्स. पिजन ड्रुआ हैव स्कोर्ड द फर्स्ट ट्राई, 7-0 से हाइलैंडर्स को लीड कर रहे हैं. 12 मिनट का खेल इस खेल में ख़त्म हो चुका है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फॉर पेरेंट्स. पेरेंट्स हैं आप एंड आपके पास बच्चे हैं हु गो टू स्कूल एंड कमिंग फ्रॉम फिजी. जिस तरह से हमने पढ़ाई की है, हमें स्कूल में होमवर्क मिलते थे जो हमें घर पर जाकर कंप्लीट करना था. और डूइंग दैट वी यूज टू यू नो गेट ट्रेन गेट फर्दर एक्सरसाइज एट होम अबाउट द थिंग्स दैट वी यूज टू स्टडी इन स्कूल. लेकिन यहाँ पर ऐसा खास तौर पर नहीं होता. आई माइट बी रॉन्ग, कुछ स्कूल्स है जो शायद ऐसा करते होंगे, लेकिन द मेजोरिटी ऑफ द पेरेंट्स दैट आई हैव स्पोकन टू, उनके बच्चों को घर ले जाने के लिए होमवर्क या फिर होमवर्क एक्टिविटीज़ नहीं मिलते हैं. हाँ, आर्ट प्रोजेक्ट होते हैं जो जाकर वो करते हैं, लेकिन ऑन अ रेगुलर बेसिस घर पर आकर रिवीजन के लिए इनको होमवर्क नहीं दिया जाता है. अगर आप इस बात को लेकर चिंतित हैं एंड इफ़ यू वांट टू डू मोर फॉर योर किड्स, नाउ स्टूडेंट्स माइट नॉट लाइक व्हाट आई एम गोना टेल यू. पेरेंट पोर्टल education.govt.nz के नीचे एक पोर्टल बनाया गया है. जस्ट लुक अप पेरेंट पोर्टल ऑन गूगल एंड यू विल कम अक्रॉस द वेबसाइट बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दैट हैज़ बीन सेट अप फॉर पेरेंट्स, जो आपको एनेबल करेगा टू हेल्प यू अंडरस्टैंड आपके बच्चे क्या सीख रहे हैं इन स्कूल. एंड दिस इज़ ब्रोकन डाउन ऑन अ ईयरली बेसिस. ईयर 3 से लेकर ईयर 8 तक यहाँ पर करिकुलम के बारे में बताया गया है. एंड ऑल्सो there are questions, homework type exercises है जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं when they are at home and spending a lot of time on TikTok, spending a lot of time on YouTube shorts. Well, you can get them to do much more for their studies. Qualifications के लिए भी आपके पास यहाँ पर ढेर सारी information है. और there's a guide for the New Zealand curriculum for year 0 to year 8 जहाँ पर ऑन अ ईयर ब्रेकडाउन बेसिस पर आपके बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ है, बी इट मैथमेटिक्स, बी इट लैंग्वेज, ये सभी आप चेकआउट कर सकते हैं. एंड यू कैन योर सेल्फ अपने बच्चों को होमवर्क आप दे सकते हैं जब वो घर पर रहते हैं. चेक इट आउट.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Get the tick from Mum this Mother's Day and shop massive store-wide savings this weekend at Briscoe's. Whether it's cozy bedding or kitchen favourites, shop Mum-approved deals and massive store-wide savings at Briscoe's. See online for T's and C's.
2: Reliance Ventilation System.
3: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
2: Moisture और ventilation का problem लगता है.
3: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
2: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
4: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
5: Introducing Pizza Hut's new tikka and paneer range. Rich tikka base, creamy paneer, bold flavor. Get the first taste from $10.99 pickup at Pizza Hut. Limited time only. T's and C's apply.

0: Yo.
1: Radio Pub.
2: रेडियो पब का मज़ा आप ले रहे हैं एंड द गेम दैट्स हैपनिंग इन फिजी बिटवीन फिजियन ड्रुआ एंड हाइलैंडर्स द हाइलैंडर्स आर पुटिंग ऑन प्रेशर लेकिन ड्रुआ आर लीडिंग बाय 12 पॉइंट्स टू 7 28 मिनट्स का खेल खत्म हो चुका है बिट ऑफ कंसर्निंग एंड सैड न्यूज़ कमिंग आउट फ्रॉम काइकोरा अभी थोड़ी देर पहले ये रिपोर्ट्स आई है पुलिस हैव कन्फर्म्ड दैट वन पर्सन हैज़ डाइड फॉलोइंग अ वाटर रिलेटेड इंसिडेंट इन काइकोरा और पुलिस वेर अलर्टेड टू अ बोट कैप्साइजिंग इन साउथ बे एट अराउंड 12:40 पीएम और सैडली एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है विच ब्रिंग्स द एज ओल्ड क्वेश्चन जब आप समुद्र में जाते हैं डू यू नो ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस दैट यू हैव टू टेक आई एम नॉट सेइंग कि ये जो हादसा हुआ इसमें कुछ गलतियाँ थी लेकिन जब आप जाते हैं एज अ पर्सन मेक श्योर यू नो वाटर सेफ्टी मेक श्योर आप ऐसे स्कीपर के साथ में जाते हैं जिनको वाकई में हु इज़ लाइसेंस्ड टू ऑपरेट अ बोट आपके सेफ्टी स्विम सूट्स ये इंटैक्ट है आपके लाइफ जैकेट्स इंटैक्ट है एंड ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस दैट नीड टू बी टेकन आर टेकन सो बी सेफ ऑन द वाटर जब भी आप जा रहे हैं मेक श्योर यू प्लान वेल एंड अगर आपको ऐसा लगे कि वेदर ख़राब होने वाला है या फिर कुछ डोजी लग रहा है तो जस्ट पुल द प्लग एंड से नो क्योंकि आप सेफ रहेंगे तो फिर दोबारा आप सेफली किसी और दिन स्विमिंग या फिर फिशिंग के लिए जा सकते हैं

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन

0: अब अगर नेट जियो सब्सक्राइब नहीं किया ना तो मेरा आत्मा तेरे को हॉन्ट करेगा। हॉन्ट क्या करेगा? हॉन्ट।
1: हम पर आपके साथ हैं जिकाश। The beat of Bollywood.
2: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
3: पाँच बजकर तीन मिनट हो रहा है इंटू द फाइनल आवर ऑफ रेडियो पब। हम और आप प्रवेश कर चुके हैं एंड टाइम्स आर गेटिंग एक्साइटिंग, क्योंकि द एक्साइटिंग मैच बिटवीन ऑकलैंड एफसी एंड मेलबर्न सिटी ये किक ऑफ बस हो गया है और इस पर भी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। उधर फिजी में जो खेल हो रहा था बिटवीन फिजन रुआ एंड हाइलैंडर्स, हाइलैंडर्स हैव मैनेज्ड टू टेक द लीड 14 points to 12। ये मैच हाफ टाइम पर भी फिनिश हुआ है, सेकेंड हाफ थोड़ी देर में शुरू होगा।

शहनाई खुशियों की बजेगी, सुन लो उम्मीदें दुल्हन से सजेंगी, सुन लो काली सी शब के पार से, देखो चंदा की हमें झलक दिखेगी।

0: A legacy that built Swaraj. A story that shaped history based on the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt and Abhishek Bachchan.
1: Kabhi Mughal, kabhi Adil Shahi, inhi saltanaton ki chhati rond kar Hindavi Swaraj ka sapna dekha hai humne.
0: Raja Shivaji, now showing in cinemas. Distribution partner, Real Star Entertainment. Rating TBC.
2: Menakau Charitable Club in association with Bhakti Satsang Boys la rahe hain Bhakti Kirtan Santhya Friday 8 May ko raat 7 baje se Vedic Center 32 Glasgow F Papa Toy Toy mein jisme kalakar rahenge Fiji ke Nitin Nilesh Prakash aur New Zealand ke Davin Nath do pahunche hue kalakaron ko ek saath dekhne ka anokha mauka tickets sirf $20 hain taiyar ho jaiye Bhakti Kirtan Santhya ke liye Friday 8 May ko raat 7 baje se Vedic Center Papa Toy Toy mein
3: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ बोली बस मेरा फोकस है हाँ।
4: अच्छा
3: बताओ तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं
4: मिसेस सिंह
5: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
6: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहूहू कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
7: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
8: Indelible Homes, your building expert.
9: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है वे सिटी GWM हैवल हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले लिमिटेड टाइम ऑफर टीज एंड सीज अप्लाई फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल

Radio Pub. Now, the next song is by MUA, और इनको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं. And if you love hip hop rap, तो you must be a fan of. I just forgot the name of that Hustle. Yes, Hustle. I think it has gone to season 4. इसके कुछ videos मैं check कर रहा था on YouTube. And if इसको अगर आप follow करते हैं, do let me know कि अभी Hustle 4.0 या फिर जो आने वाला है, इसमें कौन से artist है that we have to keep an eye out for. कौन वो है who's gonna change the game. वैसे Hustle 2.0, Hustle season 2 जो था, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि Hustle 2.0 में जो आर्टिस्ट्स आए थे, इनका कैलिबर बहुत ही अलग था. इनका रेंडिशंस एंड इनके जो बनाए हुए गीत थे, रैप थे, they were on another level. And it's sad to see कि वहाँ से निकलकर बहुत सारे artist अभी हमारे सामने नहीं आ पाए हैं. I hope they get more recognition and they get their dues in terms of their art. आइए enjoy करते हैं MUA की आवाज़ को.

बहुत ही एक्साइटिंग मैचेस हो रहे हैं इन रग्बी सोका एंड नेटबॉल एज वेल. और अभी जो खेल हो रहा है ऑकलैंड एफसी और मेलबर्न सिटी के बीच में, ये खेल 21 मिनट्स का ख़त्म हो चुका है और इस खेल में अभी भी दोनों टीमें नील ऑल से बराबर है. उधर जो मैच हो रहा है इन द ANZ प्रीमियरशिप नेटबॉल में नॉर्दर्न मिस्टिक्स और मेनलैंड ट्रैक्टिक्स के बीच में, फोर्थ क्वार्टर में ये खेल चला चुका है और 39-34 से नॉर्दर्न मिस्टिक्स की जीत हो रही है. फिचन रुआ नाउ हैव द लीड ओवर हाइलैंडर्स 24 पॉइंट्स टू 14 से इनकी जीत हो रही है.

में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या हम.rova.

0: रेडियो हम पर आपके साथ हैं जिकाश।
1: NZ Music Month, ये शुरू हो चुका है, that is the month of May, and if you think that you've got what it takes to become the next star, well, you can get in touch with us here at Hum FM on through buzz@humfm.com. बस आपको इतना करना है, अपना recording जो है studio recording होना चाहिए, which should be nice and crystal clear, that can be played on air. बस आप हमारे पास भेजिए and shortlisted artists will get their songs featured to be played on air at Hum. और फिर इसके बाद public voting शुरू हो जाएगी, जिसके जरिए we will get top 3 artists who will be featuring on our Rover app as well. Winners will be decided by total engagement, that is votes and shares across radio and social media. And if you are a winner, well, there is a lot for you in store. एक तो आपको हम पब्लिक तक पहुंचाने वाले हैं, प्लस एक्साइटिंग हम्पर प्राइजेस भी आप जीतने वाले हैं। तो buzz@humfm.com पर आप अपना रिकॉर्डिंग भेजिए, अपने बैंड का रिकॉर्डिंग भेजिए, एंड वी विल लेट यू नो इफ़ यू गेट शॉर्टलिस्टेड।

होगा बदमाश तेरे लाके में छोरे तेरे जैसे पड़े फेल मरे खाते में छोरे मरे जासे में लाने की कोशिश न कर मर जा पड़ेगा गड़े घाटे में छोरे।

0: party.
1: Lumberdar. MC Square की आवाज़ आपके लिए शामिल कर रहे थे. He is an artist who came out of Hustle 2.0. So that's what I was talking about.
2: You're listening to Chikash.
1: Alright, time for me to get out of here क्योंकि घर को जाना है. कुछ matches बाकी है जो मुझे भी enjoy करने हैं. फिलहाल जो खेल हो रहा है Drua और Highlanders के बीच में, 70 minutes of the match has finished. Drua still leading by 24 points to 14. दूसरी ओर जो खेल हो रहा है आई लीग में, और आई लीग मेंस में ऑकलैंड फुटबॉल क्लब और मेलबर्न सिटी आमने सामने ये है एट the Go Media Stadium. 42 minutes of game ख़त्म हो चुका है. फर्स्ट हाफ ख़त्म होने वाला है. दोनों टीम लॉग्ड इन एट nil all. तो इस पर अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे थ्रू आवर फेसबुक एंड इंस्टा पोस्ट. तो कीप फॉलोइंग द अपडेट्स देयर क्योंकि जैसे जैसे खेल ख़त्म होंगे हम अपडेट्स वहाँ पर डालते रहेंगे ताकि यू कीप अपडेटेड. यहाँ से निकलने का समय हो चुका है. आई विल बी बैक ऑन एयर टुमारो एट 6 PM विद संडे नाइट मेलोडीज, जहाँ पर एक रिफ्रेश्ड प्रोग्राम आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं, जहाँ पर ढेर सारे गज़ल्स भी हम बजाने वाले हैं और सेमी गोल्ड म्यूज़िक आपके साथ हम एंजॉय करने वाले हैं टू अनवाइंड एंड रिलैक्स ऑन द नाइट ऑफ संडे. तो मिलते हैं कल शाम 6 पर संडे नाइट मेलोडीज़ में. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, एंजॉय आउट देयर व्हाइल यू कैन ड्यूरिंग द वीकेंड. अच्छा वेदर है तो मेक श्योर यू गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट. लेकिन जो भी कर रहे हैं मेक श्योर कि आप सेफ रहें. Your safety, the safety of your loved ones matter and should matter. तो बस इसी के साथ अपने साथी जिकाश को आप आज्ञा दीजिए. मिलते हैं कल शाम 6 पर. आप सभी को good night and have a great Saturday night and a great weekend ahead.

0: ये है सैटरडे बॉलीवुड बस।
1: अकड़ी बकड़ी दिक्क दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिका दिक्कड़ी दिक्क दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिकीरो दिकीरो दिकीरो
2: दिकीरो दिकीरो।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या मैसेज
3: कर रहा है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
2: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
4: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून।
0: वीकडेज 6 to 10 a.m.

के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर डिजिटल हो या स्टैटिक, वी've got the spotlight for your brand. Call me Kashika on 021 769 755. Media Works. Media that works.

0: ये है सैटरडे बॉलीवुड बज।
1: महफिल में मेरी आपका वेलकम है हजरात, भूल के गोले ओ बम रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब,

0: मेरा फोन किधर है?
1: अभी बताया तो स्लाइड चप्पल कंफर्म है।
2: इस मदर्स डे क्या आप जानते हैं अपनी मम्मी का रियल रिएक्शन? From broken flower vases to लौकी की सब्जी experiments, guess कीजिए मम्मी का मूड और जीतिए ढेर सारा कैश। हम पेश करेंगे quirky scenarios on air और आपको बताना होगा मम्मी चिल करेगी या किल करेगी। Guess and enter the lucky draw to win big cash prizes. तो तैयार हो जाइए for the ultimate game show, Mom's Mood Swings on Hum. Brought to you by Indelible Homes, PFSL, Amma's Food and Malabar Gold and Diamonds.
3: Reliance Ventilation System.
4: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
3: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
4: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
3: Oh, that's not good. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
5: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
6: Zabardast hits.
7: Shuru ho jaye to rukte nahi.
6: Playing Bollywood's biggest hits.
7: Hum.
6: Ye hai Saturday Bollywood Buzz.

0: Cool Branch भी है। You get money, give cash.
1: New Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Chortle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi word, saying or phrase. Every game equals one entry. And if you answer fast and avoid the hints, you'll score a bonus entry. With $7,000 up for grabs, the more days you play, the better your odds. So what are you waiting for? Jump in and have a crack. Only on Rover.
2: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए स्विच टू कशिश फूड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड बिना एडेड केमिकल्स बिना प्रिजर्वेटिव्स एंड विनेगर फ्री सिर्फ क्लीन नेचुरल टेस्ट बिल्कुल घर जैसा जिंजर हो गार्लिक हो या परफेक्ट कॉम्बो हर डिश बनेगी फुल ऑफ फ्लेवर और हाँ बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक कशिश फूड्स ईट बेटर लिव बेटर
3: Your city, your music.
4: Hey, this is a cool neighborhood. Stop playing bajans.
3: Playing Bollywood's biggest hits. Hum.
4: Thanks. Love you.
3: Ye hai Saturday Bollywood Buzz.

0: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज़।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Pacific Electrical Services presents Javed Ali live in Auckland performing his blockbuster hits and a special tribute to the legendary Mohammed Rafi Saab in Rafi Aur Main, promoted by Star Alliance Entertainment at Victory Convention Center, 8th May, 7 PM onwards. Proudly supported by Key Contractors. For tickets, visit staralliantsentertainment.com or call Edwin on 0211-382184.
2: Your city, your music.
3: Hey, this is a cool neighborhood. Stop playing bhajans.
2: Playing Bollywood's biggest hits.
3: Hum. Thanks. Love you.

0: driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला.
2: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
3: अच्छा आप दिलजीत तो
2: आए आए बताओगे यार.
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
4: Introducing Pizza Hut's new Tikka and Paneer range. Rich tikka base, creamy paneer, bold flavor. Get the first taste from $10.99 pickup at Pizza Hut. Limited time only, T's and C's apply.
5: Get your sleep essentials sorted at Beds R Us with great deals on selected Sleepyhead beds. Save 3,100 on the queen size chiropractic HD limited edition. Now 2,499. Upgrade your sleep today at Beds R Us Manukau or Pukekohe, where dreams begin. I wanna see the DJ mix only.

0: सेल पिंटू।
1: रैम्बो का नाम सुना? टर्मिनेटर का और सलमान भाई, इन तीनों को ना एक मिक्सी में डालो, तीन चार बार घुमो, घूम घूम घूम, जो ग्लास भर के मिल्कशेक निकलता है ना,

0: breakfast show with VJ and Pooja.
1: पूरी planning से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएं।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या मैसेज
3: कर रहा है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ में नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.

0: चाहे आप हमके दें चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755 मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: डिस्कवर द मैजिक एट गो बनाना स्टाइल के, जहां आपके बच्चे सीखेंगे इन अ फन वे विद 19 ब्रांचेस अक्रॉस ऑकलैंड एंड वाइकाटो। हम हमेशा आपके पास हैं।
2: गो बनाना चाइल्ड केयर इज नाउ ऑफरिंग 30 आवर्स फॉर जस्ट $10 पर वीक फॉर ऑल एजेस।
1: तो जल्दी ज्वाइन करें टू एंजॉय दी स्पेशल ऑफर्स। और सबसे खास बात, गो बनाना चाइल्ड केयर बीचलैंड इज नाउ ओपन एंड ऑफरिंग 12 मंथ्स कंप्लीटली फ्री फॉर अ लिमिटेड टाइम। तो देर मत कीजिए, कॉल 0800-46-26-26 टुडे।
2: अवेलेबल एट सिलेक्टेड ब्रांचेस। टीज एंड सीज अप्लाई।
3: रियल साउथ इंडियन टेस्ट का क्रेविंग है, ट्राई करो कशिश फूड्स डोसा बैटर, फ्रेशली मेड इन न्यूजीलैंड, स्टोन ग्राउंड फॉर दैट ऑथेंटिक टेक्सचर, सॉफ्ट फ्लफी इडलीज और परफेक्टली क्रिस्पी डोसास हर बार, क्लासिक हो या रागी, मल्टीग्रेन या मेदू वड़ा बैटर, सब मिलेगा। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर लिव बेटर।
4: The Vibe Mix Events presents
5: The Grand Musty Night in conjunction with Freight and Cargo Brokers, Lowfinity in Wicked Chicken, Botany Downs on 23rd May at Manurewa Netball from 6 p.m. Show featuring comedy, dance and giveaways with stars Satya Anand, Jay Bhiyaji, Rowdy Naman Chapar alongside Money, Monto, Aku and Ketan. Tickets available at Get Fresh Mingri, Jay's Fresh Mart, The Agenda, Hunter's Food Town, Kes Manurewa and Wicked Chicken, Botany.
4: Don't miss out. The DJ Mix, only on Hum.

0: Flight on Hum.
1: बेटा, मेरा फोन किधर है?
2: अभी बताया तो फ्लाइट चप्पल कंफर्म है।
3: इस मदर्स डे क्या आप जानते हैं अपनी मम्मी का रियल रिएक्शन? From broken flower vases to लौकी की सब्जी experiments, guess कीजिए मम्मी का मूड और जीतिए ढेर सारा कैश। हम पेश करेंगे quirky scenarios on air और आपको बताना होगा मम्मी चिल करेगी या किल करेगी। Guess and enter the lucky draw to win big cash prizes. तो तैयार हो जाइए for the ultimate game show, Mom's Mood Swings on Hum. Brought to you by Indelible Homes, PFSL, Amma's Food and Malabar Gold and Diamonds.
0: Night

0: Yo, Honey Singer.
1: चलती रहेगी आज सारी रात दारू, तुम बोतलें तैयार कर लो, पीने के लिए कोई वार नहीं होता, तुम मेरा एतबार।

0: Flight on Hamm. हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: The Grand Musty Night in conjunction with Freight and Cargo Brokers, Lowfinity in Wicked Chicken, Botany Downs on 23rd May at Manurewa Netboard from 6 PM. Show featuring comedy, dance and giveaways with stars Satyanand, Jay Bhaiyaji, Rowdy Naman Chaffer alongside Money, Monto, Aku and Kethan. Tickets available at Get Fresh Mingri, Jess Fresh Mart, The Agenda, Hunter's Food Town, Kes Manurewa and Wicked Chicken, Botany.
2: Don't miss out.
3: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
4: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
3: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए.

0: Non-stop Bollywood.
1: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: This time I want full freedom.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: गाड़ी चलती रहे, टेंशन बिल्कुल।

0: से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
1: हाँ। अच्छा
0: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
2: मिसेस सिंह।
3: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
4: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहूहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
5: A legacy that built Swaraj. A story that shaped history, based on the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt and Abhishek Bachchan.
6: Kabhi Mughal, kabhi Adil Shahi, inhi saltanaton ki chhati rondkar Hindavi Swarajya ka sapna dekha hai humne.
5: Raja Shivaji, now showing in cinemas. Distribution partner, Real Star Entertainment, rating TPC.

0: चाहे आप हम कितने चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Playing Bollywood's biggest hit.

आप सुन रहे हम 104.2 FM और मैं हूँ आरज़ाव के साथ. भोजन मेला और फूड कार्निवल इज हैपनिंग ऑन संडे मे 17th फ्रॉम 11 AM टू 4 PM. इट्स अ फ्री इवेंट. यहाँ पे फ्री फूड भी मिलेगा, फूड फ्रॉम शिवानी रेस्टोरेंट एंड इडली सांबर, ऑल्सो फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स. ओ माय गॉड, आई लव दैट. एंड इट इज द पर्पस ऑफ दिस इवेंट इज टू सपोर्ट लॉर्ड पेंका तेश्वरा टेम्पल प्रोजेक्ट. एंड यू कैन बी अमेजिंग, इट्स लाइक अ होल मेला. आपको हिना आर्टिस्ट भी मिलेगा, ऑल्सो फेस पेंटिंग एंड बाउंसी कैसल्स फॉर द यंग किड्स. And oh my god, jewelry, clothing, sub stalls here. It's going to be a fun event and a very blessed day. And the location is at 378 Ararimu Road, Rama Rama, South Auckland. And if you'd like to sponsor or have a stall on the day, please contact Shivani Arora at 021-870012. Ya fir Shanti Ravi at 021-294-46394.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

आप सुन रहे हम ऑन 4.2 FM और मैं हूँ आरज़ू आपके साथ एंड दिस इज हम सनी ब्रेकफास्ट शो एंड नेक्स्ट अप वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट बॉलीवुड मूवीज इज कमिंग टू द थिएटर्स हियर इन न्यूजीलैंड सो यू कैन गो एंड वॉच एंजॉय बॉलीवुड मूवीज बिग थिएटर्स में बिकॉज दैट्स व्हाट आई लव Yeah, I always prefer watching it in theaters more than, you know, like phone mein ya fir laptop mein. It doesn't hit the same kyunki cinema hall mein itna bada hai and like the audio is so good, visuals are so good. So yeah, there's some movies that have just recently released and I'll tell you more about that as well as movies that you should watch out for and that will be, yeah, soon releasing here in New Zealand.

आप सुन रहे हैं हम 104.2 FM और मैं हूँ अर्जुन के साथ. सो ये महीना मे इज द न्यूज एंड म्यूजिक मंथ एंड वी लव टू सेलिब्रेट बाय you know, backing our own backyard beats. So we want you, if you're a singer, if you know anyone who's a singer in your family, in your friends, please send this message to them. So what we need is their original soundtrack. So if you're a singer, send us your original song and a little bio of yourself to buzz at humfm.com. So it is buzz at humfm.com. या फिर आप हमें टेक्स्ट कीजिए 5599 पे विथ MM एंड या आई कैन सेंड यू द ईमेल आईडी स्ट्रेट टू यू. सो आफ्टर दैट, आफ्टर यू सबमिट, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? सो देयर विल बी सम आर्टिस्ट हु गेट्स शॉर्टलिस्टेड एंड देयर सॉन्ग्स विल बी प्लेड ऑन एयर एंड दे ऑल्सो हैव दिस चांस टू कोलैबोरेट ऑन इंस्टाग्राम विद अस एंड लिसनर्स विल वोट फॉर देयर फेवरेट ट्रैक्स बोथ ऑनलाइन सोशल मीडिया में एज वेल एज ऑन एयर. And then we'll have top three artists, Juska songs, will be featured on the Rover app. And they'll also take an exciting hamper prize, which we love. So yeah, the winners will be decided by total engagement, votes, shares and everything from social media to radio. So yeah, it'll be really fun and be such a cool opportunity for any talented singers out there. So yeah, send us through your songs.

0: Hollywood's biggest hits.
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
2: Anchor Protein Plus pouches and shakes are packed with protein, yumness, and make nourishment so deliciously simple. To get your protein in, all you need to do is crack open, enjoy, done. Anchor Protein Plus, protein made deliciously simple.
3: Manukau Charitable Club in association with Bhakti Satsang Boys la rahe hain Bhakti Kirtan Santhya Friday 8 May ko raat 7 baje se Vedic Center 32 Glasgow F Papa Toy Toy mein jisme kalakar rahenge Fiji ke Nitin Nilesh Prakash aur New Zealand ke Davin Nath do pahunche hue kalakaron ko ek saath dekhne ka anokha mauka tickets sirf $20 hain taiyar ho jaiye Bhakti Kirtan Santhya ke liye Friday 8 May ko raat 7 baje se Vedic Center Papa Toy Toy mein
4: अगर आपको कभी भी लगे कि हमने ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन किया है तो आप इसकी शिकायत ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी से कर सकते हैं और जानकारी के लिए bsi.govt.nz पर लॉग ऑन करें।

0: is Sunday Breakfast.
1: आप सुन रहे हो हम ऑन 4.2 FM और मैं हूँ अर्ज आपके साथ. अनफिल्टर्ड या फिर ड्राइव शो सैंडी रिज़्बे की फेसबुक ग्रुप पेज में आपको भी हिस्सा लेनी है, आपको पार्ट होनी है. आई डोंट नो हिस्सा इज़ द राइट वर्ड, बट इफ़ यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप पेज, इसका नाम है अनफिल्टर्ड क्रू.

0: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
1: Playing Bollywood's biggest hits.
2: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम.
3: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
2: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
3: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
2: और दैट्स नॉट गुड. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
4: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18.
5: A legacy that built Swarajya. A story that shaped history based on the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt and Abhishek Bachchan.
6: Kabhi Mughal, kabhi Adil Shahi, inhi saltanaton ki chhati rond kar Hindavi Swarajya ka sapna dekha hai humne.
5: Raja Shivaji, now showing in cinemas. Distribution partner, Real Star Entertainment. Rating TPC.
7: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे.
8: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे.
7: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है. शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड इस तमा की लाइट्स, पापा टोटो.
9: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो. सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold.
10: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz.
11: You gotta go to the boat show.
12: Keep calm because Punjabi swag is on.

में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।

आप सुन रहे हैं हम ऑन 4.2 एफएम और मैं हूँ आरज़ू आपके साथ. भोजन मेला या फिर फूड कार्निवल इज हैपनिंग ऑन संडे मई 17th फ्रॉम 11 एम टू 4 पीएम तक. लोकेशन है, एड्रेस है 378 आरआरडी मू रोड इन रामारामा साउथ ऑकलैंड. एंड इसका पर्पस है टू सपोर्ट लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल प्रोजेक्ट. एंड अ लॉट ऑफ फन stuff is happening that day wo location mein wo carnival mein. Number one best thing is ki is event ke liye it's free entry sab ke liye. And there's also free khana, free food by Shivani restaurant and idli sambar, free soft drinks bhi. And there's also stalls, so if you want to do shopping, whopping, you know, jewelry say clothing tak. And henna bhi hai, so aapko mehndi lagani hai, then it's there. Face painting bhi hai bachche ke liye aur bouncy castles bhi. And it's just gonna be a very blessed day. Ek temple, ek community, eternal blessings vibes. Aur aapko is mela mein stalls khulni hai, then please contact Shivani Arora at 021-87-0012. Or aap Shanti Ravi ko bhi contact kar sakte ho. 021-294-6394 पर.

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी, हाँ भी किसने बनाया। वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
5: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
4: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
5: और पता है मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
4: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
6: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18।
7: NZ Post is always nearby. With over 560 stores across the country, you can always count on us to keep bringing the services you need close to home. Find your local at nzpost.co.nz.
8: Join the Great Big Balance Check at New World. Check your balance in the New World app or ask a checkout to spend your New World dollars today. Only with Clubcard. Only at New World. T's and C's apply.

0: You could be losing around $100 a year through sneaky drafts in your home. Using draft stoppers or window seals is a simple way to keep the heat in. Search ECA, that's E-E-C-A, get winter ready.
1: Introducing Pizza Hut's new tikka and paneer range. Rich tikka base, creamy paneer, bold flavour. Get the first taste from $10.99 pickup at Pizza Hut. Limited time only, T's and C's apply.
2: Breakfast show with Vijay and Pooja.
3: Puri planning se
4: aaye hain. Raman ne bada kamal ka answer bheja. Lekin meri biwi ko sona pasand hai, but barish mein bheegna pasand nahi hai. Ye kya? Kya matlab? Kya ki method
5: kar raha hai? Bahut khush hai. Bahut pyar karta hai apni patni se Raman.
4: Mere ko samajh bhi nahi. Ek do teen dinon se apni biwi ke piche pada hua hai. Ek din aur inhone.
5: Are kisi aur ki biwi ke piche padega to problem hogi na. Isliye apni biwi ke piche pada hai.
2: The breakfast show with Vijay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune.
2: Weekdays, 6 to 10 a.m. The beat of Bollywood.
7: World's best, hamari good brands nahi hai.
2: Brewing good vibes, Sunday style.
8: Sunday breakfast on Hum.
2: Sunday mood meter on Hum.
9: आप सुन रहे हम 104.2 FM और मैं हूँ आरजू आपके साथ एंड विल शॉर्टली बी स्टार्टिंग हमारी फेवरेट आई डोंट नो अबाउट यू बट मेरी फेवरेट गूगल ट्रांसलेट जहाँ पे मैं एक हिंदी गाना को ट्रांसलेट करूँगी वाया गूगल ओवरसी गूगल से सो हिंदी से इंग्लिश में एंड उसके बाद आई विल टेल यू द लिरिक्स इंग्लिश में विदाउट एनी धुन जस्ट लाइक रीडिंग द इंग्लिश लिरिक्स आउट एंड यू जस्ट हैव टू टेक्स्ट मी द आंसर 5599 में व्हाट यू थिंक दिस सॉन्ग इज आई विल गिव यू हिंट्स एज वी गो ऑन बट या वी विल स्टार्ट दैट नेक्स्ट

0: हम के दिन चाहे 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: इट्स 10 AM. And you forgot about dinner at yours tonight. Your fridge is empty. Your place is a mess after watching last night's game. And you're still painted the same blue as your team. No time to do the shop? Get what you need with New World Online Same Day Click and Collect. T's and C's and exclusions apply. See newworld.co.nz for details.
2: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए? स्विच टू कशिश फूड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड, बिना एडेड केमिकल्स, बिना प्रिजर्वेटिव्स एंड विनेगर फ्री, सिर्फ क्लीन नेचुरल टेस्ट, बिल्कुल घर जैसा। जिंजर हो, गार्लिक हो या परफेक्ट कॉम्बो, हर डिश बनेगी फुल ऑफ फ्लेवर। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम्स जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर, लिव बेटर।
3: A legacy that built Swaraj. A story that shaped history based on the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt and Abhishek Bachchan.
4: Kabhi Mughal, kabhi Adilshahi, inhi saltanaton ki chhati rond kar Hindavi Swaraj ka sapna dekha hai humne.
3: Raja Shivaji, now showing in cinemas. Distribution partner, Real Star Entertainment. Rating TPC.
5: Trade Depot brings you MyDia, the world's number one air conditioning company. Introducing the MyDia Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your MyDia Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply. Trade.

आप सुन रहे हैं हम 104.2 FM और मैं हूँ आरज़ब के साथ एंड वी करेंटली प्लेइंग गूगल ट्रांसलेट जहाँ पे आई गिव यू हिंदी सॉन्ग की ट्रांसलेटेड इंग्लिश लिरिक्स एंड आपको गेस करनी है कि क्या गाना है. सो इफ यू जस्ट ट्यून्ड इन, दिस इज द लिरिक्स दैट आई गिव दिस मॉर्निंग. हाउ कैन आई टेल यू आई लव यू माई फ्रेंड, आई कान टेल यू. लुक एट द हार्ट्स वर्ड्स, लेट द रेस्ट बी अंडरस्टूड, माई आईज विल एक्सप्लेन इट टू यू. So I'm gonna count down 5, 4, 3, 2, 1, and uske baad I'm gonna reveal the answer. Okay, 5, 4, 3, 2, 1.

0: ब्रो लुक एट यू, ब्लू लाइट स्क्रीन को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे प्रमोशन दे देगा, और ये कॉफी ल्यूक वार्म और टेस्ट बिल्कुल हार्ट ब्रेक जैसा। प्लीज सर, तू क्यूबिकल के लिए नहीं बनाए, तू बीच के लिए बनाए, तू लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाए।
1: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app.

0: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
1: हाँ। अच्छा
0: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
2: मिसेस सिंह,
1: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
3: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहूहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।

आप सुन रहे हैं 104.2 FM और मैं हूँ आरज़ू आपके साथ. जस्ट अ फाइनल रिमाइंडर कि जावेद अली की कॉन्सर्ट होने जा रहा है दिस फ्राइडे 8 मई को एट विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर एंड दिस इज एक्चुअली हिज फर्स्ट एवर लाइव कॉन्सर्ट इन न्यूजीलैंड एंड इट्स गोना बी अमेजिंग. ही गॉट सो मेनी क्लासिक्स, गुजारिश से कजरारे से, यू नो, ऑल दैट. एंड ऑल्सो he's going to be obviously playing his iconic songs. And uske upar, he's also going to be doing a special tribute to the one and only legendary Mohammed Rafi. So you can expect both artists' ke songs and with the full live band all the way from India. And it's going to be so amazing. I'm super excited. And tickets will only start from $59. And yeah, the tickets are running out. So make sure you go and buy it. If you'd love to buy it, it's available at www.staralliance.com.

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: जो फील हो टिकल योर टेस्ट बड्स.
1: आप सुन रहे हैं 104.2 FM और मैं हूँ आरज़ू के साथ. If you love Three Idiots, the movie, then मेरे पास आपके लिए कुछ good news है that has been recently confirmed. Coming right up after two songs.
2: Hey!

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum, the beat of Bollywood.
2: World's best, hamari koi branch nahi hai. Hum.
1: Chill, sip, smile.
3: This is Sunday Breakfast.
4: आप सुन रहे हैं हम ऑन 4.2 FM और मैं हूँ आरज़ू आपके साथ. आई एम गोना टेल यू लेटर ऑन व्हाई आई एम सो जेलस ऑफ पीपल हु आर इन इंडिया राइट नाउ बिकॉज़ ऑफ दिस न्यू फिल्म फेस्टिवल दैट्स स्टार्टिंग दिस मे 8th.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: गाड़ी चलती रहे, टेंशन

0: Breakfast on Hum.
1: आप सुन रहे हैं हम 104.2 FM और मैं हूँ आरजू आपके साथ. सो बॉलीवुड मूवीज दैट हैव ऑलरेडी रिलीज्ड इन न्यूजीलैंड आर एक दिन, भूत बंगला, धुरंधर, द रिवेंज स्टिल गोइंग ऑन, एंड ऑल्सो जिनी विद सनी 2. एंड न्यू मूवीज दैट्स गोना बी रिलीजिंग इस मंथ को स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वीक इज दादी की शादी विद नीतू कपूर और कपिल शर्मा. उसके बाद सेम दिन में ही दिस अनदर मूवी जिसका नाम है गबरू, इसमें सनी देओल और सिमरन है. एक हफ्ते के बाद वी हैव पति पत्नी और वो दो विद आयुष्मान खुराना एंड सारा अली खान. एंड देन वी हैव एक हफ्ते के बाद टू एक्साइटिंग मूवीज साथ, दोनों साथ सेम डे में रिलीज होगा साथ साथ में. सो फर्स्ट इज है जवानी तो इश्क होना है, इसमें वरुण धवन और पूजा हेज है. और सेम डे ऑब्वियसली इज चांद मेरा दिल विद अनन्या पांडे और लक्ष्य. ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड फॉर द मूवीज दैट्स ऑलरेडी रिलीज. आई एम मोस्ट एक्साइटेड टू सी एक दिन. आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड धुरंधर रिवेंज. But I am looking forward to watch Ek Din. And from the movies that are yet to be released, I'm very excited for Chand Mera Dil with Ananya Pandey or Lakshya. The chemistry looks so good and I can't wait. Aapko kaun si movie ke liye excited ho? Please message me 5599. I would love to know.

में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया